0: TKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg,
1: an Evanoff Communication Station.
2: The following is a paid program. The views and opinions do not represent those of CKJS or its advertisers.
3: हम सब कहते हैं कि हम अच्छे से जीना चाहते हैं, पर कभी सोचा है कि जी क्यों नहीं पाते? क्योंकि मन भरा हुआ है लालच के साथ। ये दिल मांगे मोर मोर एंड लॉट्स मोर। जरूरतों को तो किसी हद तक पूरा किया जा सकता है, पर ग्रीड को नहीं, बिकॉज दैट्स द कैंसर ऑफ द सोल। लालच रिश्ते बिगाड़ देते हैं। तो जब भी मन में कुछ जरूरत से ज्यादा पाने की तमन्ना जागे, तो अपने आप से सिर्फ 3 सवाल पूछे, बट कैन आई अफोर्ड इट? क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सपोज आई गेट इट, विल दैट गिव मी पीस ऑफ माइंड?

0: कल्चर ऑफ पंजाब आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज।
1: मिट्टी है पल भर में बिखर जाएंगे हम लोग, खुशबू है हर दौर को महका जाएंगे हम लोग, हम रूहे सफर है हमें नामों से न पहचानो, कल किसी और नाम से आ जाएंगे हम लोग। है ना हकीकत कि चाहे हमारे वजूद का एक अहम हिस्सा है हमारे नाम, फिर भी गौर से देखें कि कितने नाम आए और चले गए, बस जिंदा है सिर्फ वो ही नाम जो औरों को जीवन दे गए। कभी सोचें कि ऐसे नामों की लिस्ट में हम क्यों नहीं आए।

0: ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
3: चाहे हम लोग जानते हैं कि हम औरों के साथ बहुत कुछ गलत कर जाते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अनइंटेंशनली या जानबूझकर, पर फिर भी मटेरियलिस्टिक इंसान है, आज के युग के इंसान है, मानेंगे थोड़ी। मैं तो सिर्फ ये मानती हूँ कि ना गलत ये दुनिया है, ना है किस्मत गलत, जो लगे गलत सब कुछ तो है नजरिया गलत। है खुदा ने दिया जिंदगी में जो कुछ खास, उसको यूं ही गलत कह के गंवाना, ये है गलत।

हर दिन हम लोगों का अलग मूड होता है. कुछ दिन तो ऐसे होते हैं जब हम बहुत जीना चाहते हैं, और कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं व्हेन वी जस्ट फील लाइक डाइंग. लाइफ को देखने का अलग पर्सपेक्टिव हर अलग दिन के साथ. जब बहुत नेगेटिव फील करें तो आस ढूंढें. और आपको पता है कि ये जो आस होती है ना, ये अंधेरे से शुरू होती है, और एक बहुत जिद्दी टाइप की आस होती है जो अगर आपके नजरिए का हिस्सा बन जाए तो फिर

I've read a very interesting article recently about the journey of life. राइटर लिखते हैं कि उन्होंने बहुत ट्रैवल किया, दूर अलग प्लेसेस में गए, हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश की, हर दिन नए लोगों से मिले और फिर शाम हो गई। वो सड़क के एज पर खड़े थे, लग रहा था कि जैसे सफर खत्म होने को है, पर इतना ट्रैवल करके भी राइटर को वो नहीं मिला जिसे वो ढूंढ रहे थे। पता है वो क्या था? उनकी जिंदगी।

कहते हैं कि आप खामोशी में भी खामोशी से प्यार फील कर सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि प्यार तो कभी खामोश होता ही नहीं। एक जेंटल सी स्माइल, अ वार्म एंड टेंडर टच, कुछ अल्फाज एनकरेजमेंट के, खासकर उस समय जब आपको लगता है कि आप कोप नहीं कर सकते हैं, और अ वेरी सिंपल फ्रेज, लव यू, जब एक्चुअली आपके पास कोई भी नहीं होता, जब एक्चुअली आप सिर्फ उन्हें ख्यालों में ही मिलते हैं। ऑब्वियसली लव इज नेवर साइलेंट बिकॉज इट हैज सो सो सो मच टू से एंड गिव अवे।

मैं प्रभु मैं प्रभु सच पछाणिया होर भूली अवगणियारे मैं सदा रावे फिर अपना सचड़ा शब्द विचारे सच्चे शब्द विचारे रंग राती नारे मेरा सतगुर प्रीतम पाया अंतर रंग

जाए जिनी पुरखी हर नाम चेत लाया तिनके हौला गो पाए काया कंचन ता थी जा सतगुर ले मिलाए सो सच्चा सचसा लाही जे सतगुर दे बुझाए बिन सतगुर परम भुलाणिया क्या मोह देसन आग्या जाए क्या देन मोह जाए अवगुण पछताए दुखो दुख कमाए नाम रतिया से रंग चलूला फिर कै अंक समाए तिस जेवड़े अवर ना सूझई किस आगे कही है जाए सो सच्चा सच सा लाही है जे सतगुर दे बुझाए जिनी सचड़ा सच सा लाहिया हाँ तिन लागो पाए से जन सच्चे निर्मले तिन मिलिया मल सब जाए तिन मिलिया मल सब जाए सच्चे सरन आए सच्चे सहज सुभाए नाम निरंजन अगम्या गोचर सतगुर दिया बुझाए आंदर भगत करै रंग राते नानक सच समाए जिनी सचड़ा सच त्याया हाँ तिनकै लागो पाए वडांस की वार महला चौथा लला बहलीमा की धुन गावनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला तीजा शब्द रत

ज्योति ज्योत में लाए, पाखंड जम काल ना शुभ दई ले जासी पत गवाए। नानक नाम रते से उबरे सच्चे स्यों लिवलाए, पौड़ी तित जाए बहु सतसंगति जिते हर का हर नाम बिलोई है। सहजे ही हर नाम लेहो हर तत ना खोई है, नित जपियो हर हर दिन सरात हर दर गै ढोई है। सो पाए पूरा सतगुरु जिस तुर मस्तक ललाट लिखोई है। तिस गुर कहो सब नमस्कार करो जिन हर की हर गाल गलोई है। श्लोक महला तीजा, सज्जन मिले सज्जना जिन सतगुर नाल प्यार, मिल प्रीतम तिन्नी त्याया।